0: जे कहो ता उगवे रुती हो रुत होए नानक पाहे बाहरा कोरे रंग न सोए पैवच कुंभ चढ़ाही शर्म पाह तन होए नानक भक्ति जेर पै कूड़े सोए न कोई महला पहला
1: लप्पा ब्रज में तक कूड़ हुआ सिकदार का मने पुछिए बे करे विचार अंदर ज्ञान बिहूनी पाए परे मुर्दार ज्ञानी नचे बाजे

मूर्ख पंडित मत हो जित संजय करे प्यार धर्मी तर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड़ वह करवार।

जुग जुग फेर बटाइए ज्ञानी बुझेता है सतयुग रत संतोख का धर्म ग्रथ वाहो त्रेते रथ जते का चोर ग्रथ वाहो द्वापर रथ तपे का सत ग्रथ वाहो कल युग रथ अगन का कूड़ ग्रथ वाहो महला पहला।

दया कृपा संतोख सुख जतकंडी सतवट एह जनी जी का हिता पंडे कत ना ही टुटे ना मलगे ना ही जले ना जाए तन सो मन सुन नानका जोगल चले पाए चौकड़ मुलाना बह चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया।

अगे वक्त जानिए पितरी चोर करे वडिए हथ दलाल के मुस्पिए करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले।

हे संसार ताप हरण है, करुणा मैं सब दुख हरो, हे शरण जोग दयाल है। दीना नाथ मया करो, शरीर स्वस्थ खीण समय, सिमरंत नानक राम दमोदर माधव है। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखे बिख खाही, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत

क्या मोदेशन आगे जाए, क्या दिन मोजाए, अवगुण पशुताए, दुखो दुख कमाए, नाम रतिया से रंग चलूला, पिर के अंक समाए।

संडय दरबार फरीदा जे तू अकड़ लतीफ काले लिख ना लेख आप नड़ग्रीवान मह सिर नीवा कर देख

ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जुगो जुग अटल चवर शतर तखत दे मालक गुरुओं के गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी तना दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थाना उपर जुड़मिल बैठे गुरु प्यार वालेओ सतगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा वरताई है। अपने पावन चरना कमलां पास जुड़ के बैठन दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिश कीता है। आओ गुरु प्यार वालेओ जो तन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दियां लड़ीवार विचारां रोजाना आप संगतां इन्हां पावन स्थानां तो सरवण कर दियां हो ओ चल रही लड़ीवार गुरबाणी विचारां दे नाल सांझ पाईए। विचारां दी आरंभता तो पहलां सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन अपना रहमत भरिया हथ सर ते रखण। सतगुरु आप रसना उत्ते वरत के पावन शब्द गुरबाणी दी विचार साहिब आप करवा लैण और आप सरबत संगत असीस बख्शो। कोई रसना वांझी ना रहे, दोवें हाथ जोड़ अपनियां मन बिरतियां एकागर करदे आ लवाओ गुरु चरणा विच हाजरी अदब सहित सरबत संगत मिल करके उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक बार फिर करो रसनावां पवित्र और मिलके आखो जी सतनाम श्री

सतगुरु जी ने अगलियां पंक्तियां उचारियां जी। बाबा कबीर साहब का पहला एक वचन पढ़ लई है, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा होए निवरी। पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन होए निवरियो। चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन होए निवरियो। तीन उदाहरण हुण पंक्तियां पढ़ो जिहड़ियां गुरु साहब ने उचारियां। सतगुरु कहिंदे तिन मिलिया मल सब जाए, उन्हां नूं मिलके मल चली गई। किवें? फिर बाबा कबीर साहब दा उही वचन, संतां कै संग कबीरा विगड़ियो। लोकां ने की कहा? कबीर विगड़ गया। बाबा कबीर साहब कहिंदे लोक कह रहे उह संतां विच बह बह के कबीर विगड़ गया, पर उन्होंने लोगों मत कौन दे? सो कबीर रामे होए निवरे हो, वह विगड़िया नहीं, वह तो रब का रूप बन गया। तीन मिलिया उन्होंने मिलके मल सब जाए, कहिंदे सारी मैल लथ गई। सचे सर नहाए, जो सच रूपी सरोवर विच इशनान किया, सचे सहज सुभाए। हुण सच जिहड़ा जीवन विच सहज सुभा आ गया। इह मैं जिक्र जी गुरु बाबा कबीर साहब दे शब्द दा तां कीता, गुरु साहब दी बाणी दा एक वचन है, नदियां नालियां टोबियां का जल जाए पवै विच सुरसरी, सुरसरी मिल पवित पावन होए जाए। हुण अर्थ करो, नदियां नालियां टोबियां का जल जाए पवै विच सुरसरी, गंगा नदी विच सरस्वती नदी विच जे जाके नदियां दा नालियां दा टोबियां दा गंदले तो गंदला पानी भी गंगा विच पवे, गंगा विच पैके सुरसरी मिल उन्हूं मिलके पवित पावन पतित पावन होए जाए, वह भी पतित तो पावन साफ सुथरा गंगा जल बन जाता है। उहदे विच टोबे का जल पा दिओ, कितना पानी डिगदा जी गंगा नदी च, किन्ने गंदले सोमे ने जिहड़े गंगा नदी च सुटे ने, पर गंगा जल फिर भी गंगा जल ही है। उन्हूं कदे ए नहीं कहा भी ये मैला हो गया, वो फिर गंगा जल ही है। हुण जे बिल्कुल उसे तरह ही जेड़ा गंगा जल विच पानी पिया वो गंगा जल बन गया, ते जे हुण आपां आखिए मैं कुछ क मात्रा विच गंगा जल जाके टोबे च पा दें, टोबे ने ते टोबा ही रहना है। उथे वह चंगा जल भी हो सकता, टोबे का रूप बन जाए। टोबा सारा लिजा के गंगा नदी च पा दो, उन्हें गंगा जल बन जाने, पर थोड़ा गंगा जल जे लिया के टोबे च पावांगे, वह गंगा जल ने भी टोबे का रूप लै जाना। जदों साडे कोल बहुत गुण होणगे, एक अद्धा औगुण आएगा, वह औगुण भी गुण विच बदल जाएगा। पर जे साडे कोल गुणा की मात्रा थोड़ी होवे, औगुण ज्यादा होण, फिर औगुण वध जाया करदे, गुण साडे छिप जाया करदे, फिर उथे औगुणा नूं असीं नहीं रोक सकते। इसे तरह जी गुरु बाबा जी कहिंदे रब्बी प्यारियां च बैठे ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਜਲ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪਤਿਤ ਸਾਂ ਪਰ ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਾਵਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੇ ਨਿਰਮਲੇ ਤਿੰਨ ਮਿਲਿਆ ਮਲ ਸਭ ਜਾਏ, ਤਿੰਨ ਮਿਲਿਆ ਮਲ ਸਭ ਜਾਏ, ਸੱਚੇ ਸਰ ਨਹਾਏ ਸੱਚੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰੰਜਨ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਗਮ ਹੈ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਮ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਂਝ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚ ਬੈਠੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਈਐ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ, ਤਉ ਕਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਸਨ ਭਾਂਡਾ, ਬਰਤਨ, ਕਾਰੋ ਕਾਰਾ ਭਾਂਡਾ, ਪਰਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਉ ਕਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਦਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਈਐ ਭਾਗ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਓ, ਸਾਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਫਿਰ ਵਚਨ ਪੜੋ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਐਸਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਲਸਣ ਕੀ ਖਾਨ, ਕੋਨੇ ਬੈਠੇ ਖਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਿਦਾਨ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਗੰਧੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਦਬੋ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਬਦਬੋ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਕਤ ਦਾ ਸੰਗ ਬਦਬੋ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਖੁਸ਼ਬੋ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੋ ਦਿਸੇਗੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੋ ਆਏਗੀ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਨੇ ਬੈਠੇ ਖਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲਸਣ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਿਦਾਨ, ਅਖੀਰ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਸਣ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਦਬੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਕਮਾਏ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਸੁਗੰਧੀ, ਜਿੰਨੇ ਲਸਣ ਖਾਧਾ, ਲਸਣ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲਾਇਚੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਲਸਣ ਖਾਧਾ, ਲਸਣ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਲਾਇਚੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਦੀ ਖਾਧੀ ਸੁਗੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਾਧੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਲਾਇਚੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲਸਣ ਦੀ ਖਾਧੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆਵੇ। ਚੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਆਵੇ। ਉਹ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਲੇ ਜਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਜਲ ਨਾਲ ਕਰ, ਮੈਲੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅੰਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰੈ ਰੰਗ ਰਾਤੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ
ओदी भगती रंग विच रंगे होए, नानक सच समाए। हे नानक जीओ, ओ जीव फिर सच विच समा जांदे ने। कौन? जेड़े ओदी भगती रंग विच रंगे गए, प्रेमा भगती विच रंगे गए। जिवें पहलों आप जी नाल बचन बाबा कबीर साहब दे कीते, भी लोग आखण नूं आखरे रब्बी प्यारियां नाल बैठ बैठ कबीर बिगड़ गया। कहिंदे मैं ते उहनां नाल बह के रब्बी प्रेम विच रंगिया गया। जदों रब्बी प्रेम विच रंगिया गया, फिर अन दिन भगत करें, दिन रात भगती कीती, रंग राते रंग विच रतिया गया। नानक, हे नानक जीओ, सच समाए, सच विच समा गया रब दा रूप। राम कबीरा, एक भए हैं कोई ना सकै पछानी, हुण कोई पछाण भी नहीं सकल। मतलब वखरेवा नहीं रहा, भिन्नता नहीं रही, एकमेक हो गए, एकमेकता होगी, लीनता मिल गई, सच विच समा गए। नानक सच समाए, हे नानक जीओ, ओ जी फिर सच विच समा गए। जिन्नी सचड़ा सच ते आया। फिर अखीरी पंक्ति नूं दोहराउंदे आं, पहली पंक्ति पदे दी, जिन्नी सचड़ा सच ते आया, हों तिन कै लागौ पाए। कहिंदे जिन्हां ने सच नूं ते आया, मैं उन्हां दे चरणां नाल लगदा। सतगुरु जी दा वचन पढ़ो, हों कुरबाने जाऊं मेहरबाना, हों कुरबाने जाऊं, हों कुरबाने जाऊं तिन्ना कै लैण जो तेरा नौ, लैण जो तेरा नौ तिन्ना कै हों सद कुरबाने जाऊं। जिन्ना ने सच नूं त्याया, मालक कहिंदे मैं उन्हां तों कुरबान जाना, मालका उन्हां तों कुरबान जाना, लैण जो तेरा नौ, जेड़े दिन रात तेरी बंदगी करदे, लैण जो तेरा नौ तिन्ना कै उन्हां तों हों सद हमेशा ही। फिर बाबा कबीर साहब दा एक वचन पढ़ो, कबीर सुपने हूं बुरड़ाए कै जेह मुख निकसै राम, ताकै पग की पन ही मेरे तन को चाम। कहिंदे मैं ते उन्हां रब्बी प्यारियां तों अपना शरीर तक वारदा आं, उन्हां रब्बी प्यारियां तों, उह जिहड़े सुपने विच भी अकाल पुरख परमेश्वर नूं चेते करदे ने। सारा दिन जिवें दा गुजरेगा, सुपना भी उसे तरह दा आएगा। मालक दी बाणी पढ़ो, मालक पातशाह बाणी दे विच जिक्र करदे आ, कहिंदे आओ सुभागी नींदड़िए, हे सुभागीए भलीए नींदे तू आ, की पता मत शाह देखा नैणी, मैं अपने मालक नूं अपने सुपने विच ही वेख लवां। फिर एक वचन आपां जी आम करके ना पढ़दे आं, सतगुरु जी ना जिक्र करदे आं बाणी च, जिथे कहिंदे आओ सुभागी नींदड़िए, नींद नूं सुभाग वाली चंगी क्या, ओह नींद नूं चंगी क्या जिस नींद विच सुपना आवे ते सुपने विच अकाल पुरख दा नाम चेते आवे, सुपने विच अकाल पुरख दा दर्शन होवे। फिर पढ़ो, सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए। कहिंदे मैं अपने नेत्र जल नाल भर ले, सुपने विच आया ते चले गया। भाई वीर सिंह नूं पढ़ो, सुपने विच तुसी मिले असानू, असी ता गलवकड़ी पाई, निरा नूर तुसी हाथ ना आए, साडी कंब दी रही कलाई। मालका तू ते निरा ही नूर है, पर तू साडे हाथ नहीं आया, तुसी मिले सानू सुपने विच, असी ता दौड़ के गलवकड़ी पाई, तेनू गलवकड़ी च लैण दा यतन कीता, पर निरा नूर
तू निरा प्रकाश ही है, तुसी हाथ ना आए, तू साडे हाथ नहीं आया, साडी कंबदी रही कलाई, साडियां बाहां कंबदियां रह गईयां, पर तू नूर है। प्रकाश नूं जे कोई फड़ना चाहे तो फड़ थोड़ी सकदा है, रोशनी नूं जे कोई फड़ना चाहे तो फड़ थोड़ी सकदा है। हुण मन लो लाइट जग रही है, इहदियां किरणां पै रहीयां, असी आखीए भी मैं इहदियां किरणां, लाइट ते फड़ी जा सकदी है पर लाइट दियां किरणां नहीं फड़ियां। बल्लब ते फड़ लांगे, ट्यूब ते फड़ लांगे, पर उहदी प्रकाश नूं थोड़ी फड़ लांगे, उह नहीं फड़िया जाणा। अकाल पुरख प्रकाश स्वरूप है, चेते ते कर लांगे पर फड़िया नहीं दे जाणा, उह निरा प्रकाश है। सतगुरु कहिंदे जिहड़े रंग विच रत्ते गए उह सच विच समा गए, ते जिहड़े सच विच जुड़ गए, सत जिन्हां ने सच नूं त्याया, साहिब कहिंदे मैं उहनां दे चरणां नाल लगदा, उहनां दे चरणां ते नमस्कार है। बिल्कुल साहिब दे बचन उसे तरह जी, जिन्हां ना विसरै नाम से किनेहिया, भेद ना जाणो मूल साई जिहिया। ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਮਾਉਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਪੱਖ ਬਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਪਹਿਲੂ ਐਸਾ ਬਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਰਵੇ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸ

0: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहेगुरु साहिब जी। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सत गुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर ता पाया सहसे ती मन बजियां वधाइयां। राग रतन परवार परिया शब्द गावणे आईया। शब्दो ता गावो री केरा मन जनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रो अरनाले। हर नालो तू मन मेरे दू सब सारना। की कारो करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गला सम्राट स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रो अरनाले। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे। करता तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे। सदा सिव सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे। साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाईया हर शान सुख मन आय वसिया। जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो। जिस दी आए वड्याईया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै। घर सभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पंच दूत दवास कीते काल कंटक मारिया।

पाया। उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर।

मुख उजले केती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुम ठाकुर तुम

सब मुकदे चले रैना जेता समुंद सागर नीर परे ते अवगण हमारे दया करहो किछ मेहर उपावो।

मत हर पूछे कौन है पर हमारे बार। हमें अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिखाही। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जमत्रास मिटाई। एक अरदास पाठ की रत की, गुरु रामदास राखो शरनाई। एक अरदास पाठ की रत की,

प्रेम के सर लागे तन पीतर ता ब्रह्म काटिया जाई अचर चरे ता सिद्ध होई सिद्धि ते बुद्ध पाई।

मेरे गोबिंद अपने जन कौ दे वड्याई गरमत राम नाम परगास हो सदा रहो शरनाई रहाओ। एहो संसार सभ आवन जाना

खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैपंगर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैपंगर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख

0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: तू ठाकुर तुम तहि अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा मैं सूक नेरे। कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊचे ते उचा भगवंत। सगल समगरी तुमरे।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ले ते आए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास ही सहाय। अर जन अर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ दयावै ताए। सब थाई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां जी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दार दा ध्यान करके बोलो जी। वाहिगुरु पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अण डिठ कीता तना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी। वाहिगुरु जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा ली कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वस्था नाल नभाई तिना दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी। वाहिगुरु पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी। वाहिगुरु प्रथमे सरबत खालसा।

अरदास जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चितावन का सदका सर्व सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछे आरियत देग तेग फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन स्नान। चौकिया झंडे बूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखा दा माननी वा मत उची मत दा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा साई दा तार जीओ। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामा दे जिन्ना तो पंथ

बोले सो निहार सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गुरु सत नाम वाहि गुरु सत नाम वाहि गुरु सत नाम वाहि गुरु सत नाम वाहि गुरु

सत नाम वाहि गुरु, सत नाम वाहि गुरु, सत नाम वाहि गुरु। वाहि गुरु जी का खालसा, वाहि गुरु जी की फतेह।

बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लिख रहा। जात मैं जोत जोत मैं जाता कल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सिख सवाल जिन

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਤੁਦਵਣ ਸਦੀਕ ਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ, ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਊਂ, ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾਊਂ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀ ਹੈ ਦੁੱਖ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਉ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜੇ ਸਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ, ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ, ਜੇ ਵੜੇ ਆਪ ਤੇ ਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜੈਨਾ ਦੇਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ, ਖਸਮ ਮਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇਸਨਾਥ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾਸ, ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਅਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਓ, ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਿਹੇ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ, ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਖਾਸ, ਤਨ ਤਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵਹੇ ਉਦਮ, ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੀ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ, ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਮੈਂਤਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ, ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜਕ ਸਵਾਹੀ ਠਾਕੁਰ, काहे मन पौ क्रिया उड़े उड़ आवे सैकों सा तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवण खलावे कवण चुगावे मन में ही सिमरन क्रिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल त्रया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा वरिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल त्रया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा वरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सदगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब ध्यावहि सब त्यावहि तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ते आव हो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बिडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जाना तू वार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर ते आवहें हर ते आवहें तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त भए जिन हर त्याया जी तेनो तूटी जमकी फांसी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिनका पौ सब गवासी जिन से भया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तपतापहीं जपहीं बेअंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खटकर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़े अवरना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुदे आपे भावे सोई वरत जी तू आपे करहें सो होई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सत्यार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दहें सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी ते आया, जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया, गुरमखला दा मनमुख गवाया, तुदे आ विछोड़िया आ मिलाया, तू दरियाओ सब तुझी माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जन सब तेरा खेल, विजोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल, जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद मिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखे जाने हैं सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तिद सरवरड़ पाईले निवासा, पानी पावक तिन्हें किया, पंकजो मोह पग नहीं चले, हम देखा तहें डूबी अले, मान एक न चेतस मूड मना, हर विसर तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी शरणा, जैना तू नाही विसरया, आसा महला पंजवा, भई बरापत मानक देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काय तेरा किते ना काम, बेला साध संगत भाज केवल नाम, स्रंग जाम लाग पवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहो, जब तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहु नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा, जब तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहु नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं, कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो, आभा दे मुहे बचाव हो, सुखी वसे मोरो परवारा, सेवक सिख सवे करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिये, सवेरन को आय संगरिये, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना दियाऊं, जो वर चहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिखा मारे तारी है, चुन चुन शतर हमारे मारी है, आभा दे मुझे उवरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, वो जो सदा हमारे पछा, श्री अस्तु जो करी हो रक्षा, राख ले ओ मुहे राख।

भूषण काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहे हमारा। जौन काल सब जगत बनायो, देव दैन जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी, शिवकन को शिवगुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो। कटकट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी दे कुंजर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए थे दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर बछाने, कड़ कड़ के पड़बड़ की जाने। जाओ उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा, जब या कर्क करत हूं कब हूं, तुम मैं मिलत देहे धर सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत नरालम, जानत भेद भेद अर आलम, ड्रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनीर अनाद असंब, ताका मूड़े उचारत भेदा, जाको भेव ना पावत बेदा, ताको करपाहणे अनुमानत, महा मूड़ कच भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, ड्रंकार का चीनत नह पिब, आप अपनी बुध है जेती, बर्नद भिन्न भिन्न तो है तेती, तुमरा लखा न जय पसारा, कि विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहीं पूपा, अंडज रसे तज कीनी, उत्पज खान बहर रच दीनी। कहो फूल राजा हवय बैठा, कहो सिमर भयो शंकर अकैठा, सगरी सृष्ट दखाए अचंभव, अजुगा स्वरूप स्वयंभ। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे उबार असिख संघरो, दुष्ट जिते उड़वत उत्पत्ता, सकल मलेच करो रण गाता। जे अस्तु जे तब शरणी बरे, तिनके दुष्ट दुख्त हवाए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है, ताकि काल निकट न है, रक्षा हुए ताही सब कल्ला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे न हरियो, ताकि ताप तन कमय हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाह शवाय सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संवारा, काल भांस ते ताहें उबारा, जिन नारे नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दै लेहो उबारी, सर्वठोर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। खड़ग कीत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दै लेहो उबारी, सर्वठोर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो।

बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंक तरह नहीं आन्यो राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सभाए बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो श्री स्पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो हे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छड़ के कहो तोहारो द्वार बहें गहे की लाज अस गोविंदास तुहार सगल द्वार को छड़ के गहो तोहारो द्वार बहें गहे की लाज अस गोविंदास तुहार राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सदगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहि सीती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्दो तंगावो हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हरनाले हरनाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सवना गलना समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सुधार हो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर तां तेरा सब किछ है जिसने हैं सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावाए नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द गने रे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरे सच्चा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जेना भुखा सब गवाइया कर शान सुख मन है बसया जेनों इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया एह वड़ियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंशव तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द बाजे कला जित कर धारिया पंच दो तुदवास कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तें सुख होआ तित हर अनहद बाजी आनंद सुन हो वड भागी हो सगल मरो रथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गुर ते जानी
सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा पर हुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्नाद तुरे सुनते पुनी कहते पवित्र सतगुर रहा पर हुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्नहद तुरे मुंदामणी महला पंजवा थल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृतनाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे अदारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उदारो एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिये सब नानक ब्रह्म पसारो स्लो महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैं नौ जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरेया तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

जो प्रभ को मिलवोच है खोज शब्द में राज करेगा खालसा की रहे न ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो ख्वार।

गुरमत राम नाम परगस्सह सदा रह शरणाई रहौ। एहो संसार सब आवन जाना, मन मूरख चेत अजाना। हर जियो कृपा करहो गुर मिलहो, तहर नाम समणा। जिसकी वत सोई प्रभ जाने, जिसनो दे सो पाए। वस्त अनूप अत अगम अगोचर, गुर पूरा अलख लखाए। जिन एह चाखी सोई जाने, गुंग की मिठाई। रत्न लुकाया लुक नाही, जे को रखे लुकाई। सब किछ तेरा तू अंतर जम्मी, तू सबना का प्रभ सोई। जिसनो दात करह सो पाए, जन नानक अवर न कोई। सब किछ तेरा तू अंतर जामी, तू सबना का प्रभ सोई। जिसनो दात करह सो पाए, जन नानक अवर न कोई। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीयां दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहन साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिट कीता।

से पौड़िया आनंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी, आप जिया दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी, तिल फुल पेटा बांदर प्रवान करनिया, यात्रावां सफल करनिया, दरों घरों गुरु सिखी जीवन नाम बाणी दियां दातां बख्शनिया, गुरमत अनुसार मनोकामनावां पूरियां करनिया, सतगुरु जीओ आप जिया दे हजूर पवित्र कड़ा प्रसाद जी देख सज के हाजिर है दर प्रवान होवे, आप जी करो कृपा अपनी अमृतमयी बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो, हुक्मां अनुसार जीवन ज्यों दी समर्था बख्शो, अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी, सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन, नानक नाम चढ़दी कलम तेरे पानी सरबत दा उपला। दोहरा गया भई अकाल की तबे चलायो, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो,

दया करहो किछ मेहर उपावो डुबदे पत्थर तारे हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिख खाही माया मोह परम पै भोले सतदारा स्यों प्रीत लगाई।

मांगे मुख कर संतन की तूरे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तुदे आगे अरदास हमारी जियो। वाहेगुरु।

0: वाहे गुरु जी की फतेह।
1: सवैये महल्ले तीजे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सोई पुरख सिवर साचा जाका इक नाम अचल संसारे, जिन भगत पव जल तारे सिमरो सोई नाम परदान, तित नाम रसक नानक लैना थप्यो जेन सर्व सिद्धि कवजन कल सुबुद्धि, कीरत जन अमरदास विस्तरिया कीरत राव किरण प्रगट संसारे, साखत रोवर मवल सरा उत्तर दखन पूब अर पश्चिम, जय जय जय जय जय कार जपंथ नरा, हर नाम रसन गुरमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम तरिया, सोई नाम अछल भगत पवतारन अमरदास गुर को फुरिया, सिमरै सोई नाम जख अर किनर साधक सिद्ध समाध हरा, सिमरै नखत्र अवर त्रू मंडल नारदाद प्रहलाद वरा, ससियर अर सूल नाम उलासै सैल लोजिन उदरिया, सोई नाम अछल भगतै पवतारन अमरदास गुर को फुरिया, सोई नाम सिवर नवनाथ निरंजन शिवसन काद समुद्रिया, चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राते अमरीक पव जल तरिया, उदो अक्रूर तरलोचन नामा काल कबीर किल विक हरिया, सोई नाम अछल भगते पवतारन अमरदास गुर को फुरिया, तित नाम लाग ते तीस ते आवे जति तपीसर मन वसिया, सोई नाम सिमर गंगेव पतामे चरण चित अमृत रसिया, तित नाम गुरु गंभीर गरु मत सतकर संगत उदरिया, सोई नाम अछल भगते पवतारन अमरदास गुर को फुरिया, नाम कित संसार किरण रव सुरतर साख, उत्तर दखन पूब देश पश्चिम जस पाख, जन्म ता एहो सक्याथ जित नाम हर हृदय निवास, सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन आसास, पलो प्रसिद्ध तेजो तना कल जोड़ कर त्यायो, पलो प्रसिद्ध तेजो तनो कल जोड़ कर त्यायो, सोई नाम भगत पवजल हरन गुर अमरदास तै पायो।
2: नाम त्यावै देव ते तिस अर साधक सिद्ध नर, नाम खंड ब्रह्मांड तारै जह नाम समाद्यो हरक सोख सम कर सहारै, नाम शिरोमण सर्व मैं

चरण तपर सके अथ चरण गुर अमर पवल रे हाथ ता पर सके अथ हाथ लगे गुर अमर पे जी ता पर सके अथ जी गुर अमर पणिज नैन ता पर सके अथ नैन गुर अमर पिखी जै श्रवण ता पर सके अथ श्रवण गुर अमर सुनी जै सके अथ सोहियो जित ही बसै गुर अमर दास निज जगत पित सके अथ सो सिर जालप पणै जो सिर निवै गुर अमर नित ते नर दुख न भुख ते नर निधन नौ कहिया ते नर सेव नौ करै

गौर अमरदास की अकथ कथा है। एक जी कछ कही न जाई सोडी श्रेष्ठ सकल तारण को।

जुग चारे तन जे पवे बिन सतगुर सुहाग न होई राम। निहचल राज सदा हर के रा तिस बिन अवर न कोई राम। जुग चारे तन जे पवे दिन सतगुर सुहाग न होई राम। निहचल राज सदा हर के रा तिस बिन अवर न कोई राम। तिस बिन अवर न कोई सदा सच सोई गुरुमुख को।

गुरु मुख प्रभु रावे दिन राति, अपना साकी शोभा होई। नानक का मन फिर रावे अपना, रब रहे आ प्रभु सोई।

हर के रंग रती है कामना, नील प्रीत में सुख पाए राम, नील प्रीतम सुख पाए सच सुमाए, सच वरते सब थाई सचा सुवार करे दिन राती, कामना सच समाई हर

नानक महली महल पशाने गुरमति हर पाए सातन बाली तुर मिली मेरे प्रभ आप मिलाई राम गुरमति कट चानन होआ प्रभ रब रहया सब थाई राम प्रभ रब रहया सब थाई मन वसाई पूरब लिखया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पानी सच सिंगार बनाया कामन निर्मल हो मैं मल खोया

नाम नगैन दुपाई कामन निर्मल हमे मल खोई गुरमत सच समाई नानक आप मिलाई करता नाम नवै निध पाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर्वरे का नाथ, रोशनी चराग, बारगाह इनायत, सर्व कला भरपूर हाजर हजूर, बेअंत भगतां दी टेक, दसां पातशाहियां दी जागदी जोत, चवर और तख्तां दे मालक, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जीयां दे पावन और पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जीयां दे अमृत वेले दे दर्शन कर रहे हां, अमृत वेले दीयां हाजरियां लगवा रहे हां। जो सतगुरां ने पावन हुक्म दी दात बख्शी है, सो पावन हुक्म सूही राग दे अंदर तीजे पातशाह धन धन श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जीयां दा शब्द है। जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीयां दे अंदर 769 अते 770 अंग दे उपर सवाईमान है, सो पातशाह जी पावन हुक्म दे राही किहड़े नजरे कर्म करना करदे ने, आओ प्रेम सतकार वैराग दे विच भिज के सरवण करना करिए जी। सूही महला तीजा, जुग चारे धन जे पवै बिन सतगुर सुहाग ना होई राम, निहचल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर ना कोई राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: विश्वमा धरती विश्वमा खानी विश्वमा साल लगे प्राणी विश्वमा संजो विश्वमा विंजोग विश्वमा भुख विश्वमा विश्वमा सिफत विश्वमा सला विश्वमा दूचर विश्वमा रा विश्वमाद नीड़ विश्वमात दूर विश्वमाद देख हाजरा हजूर वेख विडाउन रहा विश्वमात नानक बूजन पूरा भाग महला पहला
1: कुदर सह कुदर सुनिया कुदर पौ संसार कुदरत पाताली आकाशे कुदर सर्वकार